0: एक बात बोले श्री कालिका माई भगवती की
1: जय,
0: भक्तर भगवान की
1: जय,
0: भक्त वत्सल भगवान की
1: जय,
0: सारा भक्त प्राणी की
1: जय।

कलब में आया मैं तो मुझको रोकेगा कौन और कहीं को मेरा मूड में डांस करेगा किसी का डैडी से नहीं डरेगा जिसको जो भी है करना वो कर लो इधर ही मैं

नमस्कार रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम बैने में धवलो सात में गार्द बाट हो मो बद्र प्रसाद साहब बट आज विक्रम संवत 2083 साल श्रावण शुक्ल पक्ष सन 2026 अगस्त 16 तारीख श्रावण 31 गते आइतबार चौथी तिथि अब स्तुति करू आयु द्रोण कुमार कैसरिया साक्षेण कल्पय भरी

0: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: मेरो नाम नरबहादुर खड्का। मेरो घर कालिङचोक वडा नम्बर 9 कटुवा बजार कालिका थान नरबहादुर खड्का 82 मेरो उमेर।

Bharatana Chaina, Bhikagari Kanchan, Rukamani Bhastan, Tarapani Asai, Tiramana Lanchan, Bhajanarayana, Bhajanarayana, Bhajanarayana, Sajana Ho. जब तक धन को लाऊं छ धारो तब तक सफल

कृष्ण जी को दयालु मनात दन्त छोडी जाँदैन मनन्त कृष्ण जी को बत्तीसे दन्त दन्त छोडी जाँदैन मनन्त दन्त छोडी जाँदैन मनन्त दन्त छोडी जाँदैन मनन्त कृष्ण जी को